பர்தை சத்திரமா பர்தை எஸ்எம்மா டுவெல்த் கார चार हजार बुढ़ा ले टंडे हाल घाम बुढ़ा का पेपर राम से क्या हो।